तीर्थ नावां जे तिस भावां बिन भाणे के नाय करी जेती सिरठ उपाई वेखां बिन कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई।

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भक्सार असंख मौन लिवलाए तार।

असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गड़बड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन।

गावह तोहनो पौन पणी बैसंतर, गावह राजा धर्म द्वारे, गावह चित्त गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावह इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख कीता अपना जिवत सिदी वडियाई, ज्योतिष भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पातशाहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साद, संजोग विजोग

भाग हुआ गुरसंत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हौ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला, घर पहला, चौप दे इको ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त जूनी सह भंग गुर प्रसाद जियो डर।

माणे हैं, सौ नेड़ै तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे हैं। पैकियां देह सलाइयां नैनी भाव का कर सिंगारो, ता सुहागण जानिए लागी जां सौ धरे प्यारो।

मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर गलख पारा, चिंता करो हमारी, जल थल महील भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब

अतीत हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगाह हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं। पुजंग प्रजात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरम परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता भेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगेश्वरम परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नाने नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अछेदी अभेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्त सत्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निधाने नमस्तं निर्नाथे नमस्तं प्रमाथे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अकाले नमस्तं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व यंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिदं निवासी चरपट शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं देवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त जोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग

कि अव्वल गुनाह हैं कि शाहान शाह हैं कि कारण कुनिंद हैं कि रोजीद हिंद हैं कि राज करहीम हैं कि कर्मंग करीम हैं कि सर्वंग कली हैं कि सर्वंग दली हैं कि सर्वत्र मान्य हैं कि सर्वत्र दान्य हैं कि सर्वत्र गौण हैं कि सर्वत्र पौन हैं कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहो कि सर्वत्र पाहो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र पोख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र मान्य सदैवं प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वंग कलीम है कि परमंग फहीम है कि आकल अलाम है कि साहिब कलाम है कि हुसनल वजू है तमामल रुजू है हमेशुल सलाम है सलीख तो मदाम है गनीमल शिकस्त है गरीबुल परस्त है

हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुयुगत सुधा हैं, सदैव स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम हैं, सदैवल अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप

अनंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सो नित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट क्षमता प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसावल क्षमता प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते परमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं श्रीक हैं मितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती शंत प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुस्नल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी दहिंद हैं के राज कर हिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुस्नल जमाल हैं गनीमुल खराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं हरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तल निवास हैं अगंजल गनीम हैं रजाय करहीम हैं समस्तल जुबां हैं कि साहिब की राह हैं कि नरकं प्रणास हैं बहिस्तल निवास हैं कि सर्वल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तल अजीज हैं परम परम ईश है समस्तल अदीश है अदेशुल अलेख है अमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मित्तो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि मित्तो विभूत है कि मित्तो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मित्तो अपंग है मद पार्षंत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव नास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशिज अंग आसन भंग उपमा पारगत मितोदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तिर तर तुरास अजान वाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुर बर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनझंझ गात अनरंज बात अन टुट भंडार अनठट अपार आडीठ धर्म अत तीठ कर्म अणबरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विसंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करणा कृत है अकृता कृत है तरणी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नरनायक है खलकायक है विसंबर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है पापंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है आकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हर्ता हर हैं परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्म बस हैं जस के जस हैं पुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अमय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख
अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रिया छंद नमस्तल परनामे समस्तल परनासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये श्री मुख वाक पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो घर जोग जति के सूर सरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूं ते करति विनेक रति के माति मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली विद न्यावत शीस न जात विचारे ते पय तो कहाँ पय पूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे विन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब ऐसु विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दबाह सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हलैन हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार है सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचकन एक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानवेंद्र गजेंद्र नराद पजौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत पद से जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के परस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुन्द्र लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशाह को शीस निवायो को मुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई बहर असुर का काट समाथा श्री असकेत जगत के नाथा द्वितीय बान सो दो अर कर काट दयो अस्तुज नर नाहर पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन भ्रष्ट गगन ते पई सभ ने आन बधाई दई
धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा खल भवन के सिरजन हारे दास जान मोहले हो बारे कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तव चरणन मन रहै हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दय मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिए सब बैरन को आज संघरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सुतुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्रु हमारे मारी है आप हाथ दय मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हूजो सदा हमारे पछा सिरिया स्तुजू करिय हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाये प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा परजा तर तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद।

बहु परपंच कर परधन लियावे। सुत तारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पैली दे। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनता कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे ता नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई, जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे बदले दे दियो। तां जमदूता ने कहा ए श्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होन लगे। तां कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू एक श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे, मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई, जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पात्र

गुरु नानक सखी पाशाह बख्शिश कर दिया न भाई पही प्राप्त मानस दे होरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया में

दूसरा शब्द शरण गुरु जी भरत नारायण पदार्थ वसा पर्याय वाणी गुरबाणी लागे तीन हस्ते

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: 28 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिरिया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पार पै गया।
1: हुण महासिंह अगे 3 काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पार पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरि सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरि सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पहुंचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरि सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलवे ने सिख फौजां समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथां नूं लिताड़ दे सिंघां दे घोड़े अगे वधण लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरां विच रुलण लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई। सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नूं इउं टकरे।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आखिया,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वाल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

कबीर जी नू नीच जाति वाला समझ के रामानंद जी उपदेश नहीं सन देंदे। कबीर जी ने पूछा भाई कोई ऐसा समा भी है जदों रामानंद जी लंघदे होण ते मैं उना दे चरना ते डिग के उपदेश दी याचना करा। उचारण करो श्री वाहिगुरु। तां किसे ने दस्या भाई अमृत वेले गंगा दा इशनान करन लई बाहर निकलदे हन। आख्या ठीक है, दूजे दिन अमृत वेले जाके उस रस्ते विच लम्मे पै गए जिथों दी रामानंद रोज लंघिया करदे सन, इशनान करदे सन, ते वापस आके फिर अपने निज स्वरूप विच जुड़ जाना। अज रामानंद जी आ रहे हन ते जदों पैर दी तुम वजी आख्या राम के राम कहो, राम के प्यारे राम कहो, ए सौन दा वक्त नहीं ए जपन दा वक्त है। उचारण करो श्री वाहिगुरु। बस ओ उपदेश समझ के नाम जपना आरंभ कर दिता ते फिर ऐसा जपिया कि अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है को ना सके पहचानी। ऐसा नाम जपिया के अकाल पुरख विच और कबीर जी विच कोई भेद ना रह गया, हर हर जन दोए एक है, बिप विचार किछ ना है, जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखे समाए। सो भगत कबीर जी नाम जप के राम दा रूप ही हो गए। इसलिए हजूर कहंदे जे जपना है तो फिर मन करके जप, जिवें ध्रुव ते प्रहलाद।

लिया ही नहीं। वो एक पिता सन और पिता ही पूरे हो गए। वो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नो अपना पुत्र समझदे सन और पुत्र ही समझदे रहे। इस तो वध कुछ ना समझ सके। उसी घर विच उन्हां दी भैण बेबे नानकी है तो उसका भी रिश्ता भरा दा, पर वो पीर भी समझ लिए, गुरु भी समझ लिए। उसे नगर विच उस नगर का मालिक है राय बुलार, वो भी गुरु नानक पातशाह नूं रब दा रूप समझदा है, पर मेहता कालू जी नहीं समझ सके, माता जी नहीं समझ सके।

अजकल घोड़िया का व्यापार बड़ा अच्छा है पिता जी, जेड़ा मैं व्यापार करना पिया, सौदागरी करना पिया, उस तो वेल न बेटा तू केड़ी सौदागरी करना पे, मैनू तो वेला ही नजर आना और ना तेरिया गल्ला।

और ढंडोरा पिटवा दिता सी कि किसी को एक भी पैसा निकल आया तो उसनु सजाए मौत हो जाएगी। ते कारो दे कहर तो सब डरते सन। कुछ दिन जदों कोई पैसा ना आया

सब देश खाली हो गया, किसी को पैसा नहीं। ता किसी ने एक सलाह दी कि एक होर भी तरीका है, ये तो डर का तरीका सी हुण लालच का, कि जे कोई एक भी पैसा लिया के देवे मैं अपनी लड़की का रिश्ता और अद्धा राज देंगा उसे। जदों वेखिया कि किसी कोल भी पैसा नहीं, तां एक नौजवान मन चला अपनी मां दे पास जाके रोण लग पिया, कहिंदा मां राज मिलदा है ते बादशाह दी बेटी दा रिश्ता। मां ने बथेरा समझाया कि मैं तां उम्र गवाई है, इस राज विच कदे सुख नहीं वेख्या, इसने तां गरीबां दा खून नचोड़िया है, कदे किसे नूं सुख नहीं दिता, तू की उम्मीद करदा है, झूठी गल ते इतबार ना करदा। खेड़े पै गया कि किधरे कोई लुको के रखिया हो, बहुत दिन जिद फड़ी रखी तां मां ने दस्या कि मेरे पास तां नहीं रखिया, पर जदों तेरे पिता नूं दफनाया सी तां उस दे मुंह विच इक पैसा रखिया सी। कबर खोद लै, उसके मुंह विचों कढ लै, वह तां हुण रस्म पूरी हो गई, जे वह तैनू मिल जावे। कहिंदे ने उसने इसे तरह कीता, अपने बाप की कबर खोद दिती, उसने मुरदे शरीर विचों पैसा कढ लिया, कारू दे अगे चाई चाई जाके रखिया, उसने नाले तो उसनू बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया, नाले पैसा ले लिया। पुछया कित्थों लिया है, उसने दसी गल सारी कहानी, तां कारू ने सारियां कबरां खुदवा दित्तियां सी।

आख्या जी तुसी गए ते थोड़े दिन बाद शरीर छड़ गए। गुरु जी ने दिव्य दृष्टि नाल वेख्या कि कुत्ते तो मर के उसकी आत्मा एक सर्प विच प्रवेश की थी। सप बनिया होया सी। वो एक बार पंगूड़े विच खेल दे बच्चे वल जा रहा सी, पड़ोसियां ने मारिया। बाणी च लिखिया है कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मैं जी मरै, ऐसा चिंतन करदया होया मौत हो जावे, पैसा पैसा सिमरदया मौत हो जावे। ता कहंदे ने सर्प जोन वन वाला उपर उसनू सप दी जोन लैनी पवेगी। ते दूसरी गल गुरु साहबा ने सहस्कृति दे श्लोकां विच ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਕੂਕਰੈ ਸੂਕਰੈ ਗਰਦ ਵੈ ਕਾਕੈ ਸਰਪ ਨੇ ਫੁੱਲ ਖਲ। ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੂਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਖੋਤਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਪ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਾਂ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ जिसने गुरु नहीं धारण किया। भाई गुरु भी धारण कर, जितनी देर गुरु नहीं धारण कर दे ता सिखी नहीं कमा सकते। सिखी की रहत मर्यादा उस दिन शुरू होगी जदों तुसी पहला कदम रखिया, अमृत छक लिया, गुरु धारण कर लिया। अमृत भी छकाया जाना है। अमृत छकाउण वास्ते अपने नाम गुरुद्वारा साहिब सत्कार जो ज्ञानी जी पास जा जिथे हूं बाद विचार करके दस दिता जाएगा। दफ्तर विच ज्ञानी जी पास अपने नाम लिखाओ अमृत। जेड़ा गुरु मंत्र तो हीणा है वह भी इन्हां टेढ़ियां जूनां विच जाएगा। जेड़ा माया का चितवन करदा करदा मर गया उस सर्प जोन, गुरबाणी च लिखिया सर्प जोन वल वल सप दी जोन चो मारिया पड़ोसियां ने, फिर हुण वी घर दी गंदी नाली विच उत्थे दा किरम बन के रह रहे। गुरु जी ने दिव्य दृष्टि नाल वेख्या। मरदाना जी नूं कहा गुरु साहबां ने कि उस नाली विचों उस किरम नूं कढ ले। मरदाना जी ने उस गंदे नाले विचों उस कीड़े नूं कढ़िया, धो के साफ करके गुरु जी दे पास रखिया। गुरु जी ने उस नूं चुक लिया, सिर थले रखिया, अपना चरण लाया ते उस नूं पुछिया, समर्था दित्ती, पुछिया भी हुण कल्याण कर दईए तेरा, हुण मुक्ति लैणी के नहीं लैणी। हुण तां ओह रो रिहा सी तां ही कि हुण मेरी बड़ी बुरी हालत है, हुण कृपा करो, हुण कृपा करो, बख्श दे, भुल्लां बख्श दिओ, हुण मैनूं मुक्ति दे दे, अपने चरणी ला ला। गुरु जी ने कृपा की, मुक्त कर दिता, मुक्ति बख्श दिती। वह हुण देव रूप, दिव रूप होके घर के बच्चों नूं दर्शन दे रहा है और नाल उन्हां नूं कहिंदा वी इह जगत गुरु बाबा जी तुहाडे घर आए बैठे ने, जितनियां मोह दियां चोटां मैं खाधियां ने तुसीं ना खाई। आखिर सुख तां मुक्ति विच ही है, आखिर इत्थे ही पहुंचना पवेगा। पर तुसी बैल बन के, कुत्ते बन के, सप बन के, कीड़े बन के ना पहुंचे। तुसी हुण गुरु जी का उपदेश लै लो तो तुसी मुक्त हो जाओ। साध संगत आपां भी किसी ना करियो। असी बहुत हालत वेखदे इंसानां दी ऐसी विचरदे संगतां विच जिन्हां दी हालत बैलां वर्गी है, घर विच कुत्तियां वर्गी हालत है, सप वांगू माया ते बैठे रहिंदे, किसे नूं हक नहीं देना। अपना मरन किनारे होए पुत्रां नूं नहीं दे सकदा,
ایسی حالت وہ جیوں دے جاگ دے سکرپ نے پھر وہی گندگی دے کیڑے ہی بننا پہنتا ہے اس تو بعد اس گھر حالت ہو جاندی ہے پھر ساہ لینا مشکل ہوندا ہے تے پھر بندہ جا کے روندا ہے پٹدا ہے کہ ہن میں کی کراں بھائی ہن کوئی کی کرے تو پہلا گرو کی گل نہ سن اپدیش نہ لے تے گرو کرپا کرے یہ بیل بن کتے بن سپ کیڑے بن تو پہلا ہی سوجی آ جائے

कवि कहता है सुजान चंद मैं कवि हूं, हिंदुस्तान ते राज है औरंगजेब बादशाह का, जिसने ऐलान किया सारे हिंदुस्तान के कोई राज

आपसारे गुरु के पास सजे इसी तरह संगतां सजियां संगतां दी भीड़ लग गई वारी वारी सारे मत्था टेकते हैं गुरु की आशीष लैके।

बड़ी सेवा करता है, पता नहीं कितना आए, बोलता काटा है, सिमरन करता रहता है, पता नहीं कौन है।

सिर्फ संगता समेत सुजान चाहते इस पिंड वाल चल पे पिंड के लोगों को पता लगा सुजान चंद पता नहीं।

काका, मेरे नूह के पेट में बड़ा दर्द, चल मेरे नाल और को दवाई दे, इस जान चल सोच दे, जे माई नाल जावां तो फिर दर्शन नहीं हो, अगे बड़ा तरस है, पता नहीं और कितना तरसना होगा। संगत इतो लंघदिया ने, दर्शन कर जा, जो दर्शन करके आदि ने उन्होंने खुशी चाहिए।

माई और चलना के दर्शन रह जाए पर फिर को बचा रहे अपने आप को कह रहे कोई सुजान जा जब तू आनंदपुर साहब गया सै ते कलगियां वाले पिता ने कहा सी दौड़ जा तू दौड़ गया तू नहीं आया तेनू कलगियां वाला उठे ले

परंतु उतना चिर ही सुखी वस सकेंगी जितना चिर जीव आत्मा तेरा साथी तेरे नाल है। जदों तेरा साथी जीव आत्मा उठ के चल पवेगा तदों ही काया तू मिट्टी विच रुल जावेंगी जो सह प्रमाण कर रहे हैं।

एक आया जितना चिर तेरा खसम जीव आत्मा तेरे घर विच वसदा है सारे लोकी तैनू जी जी आखदे हन सारे तेरा आदर सत्कार करदे हन पर सह फरमाउंदे हन हे काया हे जिंदे जदों तेरा निमाणा कन जीव आत्मा उठ के तुर पवेगा तदों कोई भी तेरी बात नहीं पुछेगा जो साहेब अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं।

हे जिंदे, जितना चिर तू पेके घर विच भाव इस संसार विच जितना चिर तू पेके घर विच रह के उस खसम प्रभु दा सिमरन करेंगी, तद ही सौरे घर विच परलोक विच जाके तू सुखी वसेंगी। जो साहेब अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

पंचम पातशाह अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं। ओ मनुख भागा वाला है जिससे मन विच तेरा प्यार जाग पिया, जिससे मन विच तेरे दर्शना दी तांग पैदा हो गई, जेड़ा विराग विच तेरे दीदार करना चाहता है, जिसके मन विच विराग है उसनू ही प्रभु मिल पैंदा है। ओ प्रभु दे दीदार कर सकता है जिसके मन विच विराग है। रायपुर दे रहन वाले सोना अते मोहना जिन्हां नू भक्ति दा रंग चढ़िया है, दिन रात ठाकरां दी पूजा करदे हन, निता पर ठाकरां नू इशनान करवा के धूप बत्ती करके कीर्तन विच जुड़ जांदे हन, मगन हो जांदे। एक दिन ठाकरां नू इशनान कराउण वास्ते जल लिया रहे हन, तां रस्ते विच एक गुरु दा प्यारा गुरसिख जो जख्मी हालत विच पिया है ते मुखों उचार रहा है कि कोई एक घुट पानी दा पिला जा, ता इन्हां ने सुनिया अते रुक गए, ता फिर की आख्या असी ता ए पानी ठाकरां दे इशनान वास्ते ले जा रहे हां, ए पानी जूठा हो जावेगा ता फिर तुर पे। फिर गुरसिख ने आवाज दिती, भाई एक घुट पानी दा पिला जाओ। फिर दोनों जने रुके वापस मुड़े कि इस नू घुट पानी दा पिला दे, फिर आखदे हन कि जे इस नू घुट पानी दा पिला दिता ए पानी जूठा हो जावेगा, इस जल दे नाल असी ठाकरां नू इशनान कराउणा। फिर तुर पे ता गुरसिख ने आख्या तुसी एक घुट पानी दा नहीं पिलाया, अच्छा जिस ठाकर वास्ते तुसी जल ले जा रहे हो ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। आज गुरसिख दे मुंह चो ए आवाज निकली, ए आवाज सोना ते मोहना दे कन्ना विच पई, ता ए आवाज गूंज उठी ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। घर आए ठाकर नू इशनान कराया, कीर्तन करन लगे पर आज मन नहीं जुड़ रहा, कन्ना विच ओ आवाज आ रही है ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त मन ना जुड़िया सोचिया कि उस गुरसिख नू घुट पानी पिला आई, हो सकता है साडा मन जुड़ जावे, ता उथे पहुंचे की तकिया जो गुरसिख पानी मंग रहा सी अज शरीर छड़ गए, श्वास निकल गए हैं, मन बहुत उचाट होए कि असी इस नू एक घुट पानी दा नहीं पिला सके, सचमुच एक बड़ा वड्डा पाप कर बैठे। ता पुछिया कि ए गुरसिख कौन है, पता लगा कि ए कलगीधर पातशाह दा अनन सिख है, प्यार वाला सिख है, जो संगत शहर कलगीधर पातशाह दे दर्शन करन जा रही सी, डाकुओं ने संगत ते हमला कर दिता, ता इस गुरसिख ने डाकुओं नाल मुकाबला कीता, ता डाकुओं ने इस नू जख्मी कर दिता, जो कि पानी मंगदा मंगदा शरीर छड़ गए, ता इन्हां दोहां दे नेत्रां विचों अथरू वग तुरे कि असी इतने निभागे, इतने निकरमे कि असी इस नू एक घुट पानी दा भी नहीं पिला सके। अज मन विराग विच आ गए, मन भर गए कि किसे तरीके सहज कलगीधर पातशाह दे दीदार करिए ते अपनी भुल बख्शाई, ता अज दोनों दे मन भर गए, दर्शना दी तांग पैदा हो गई, उस सज्जन नू लभण तुर पे हन। सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंती यार।

सतगुरु रायपुर विच आए चरण पाए बेंत संगतां ने दर्शन कीते बख्शां हासिल कीतियां ता इन्हां दोनां नूं पता लगा सोना ते मोहना कि साहिब कलगीधर पातशाह इत्थे आए हन चरण पाए हन क्यों ना असीं वी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे कि चल के साहिबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहिबां दे दीदार करन आए पर साहिब अगे नहीं हन दर्शन नहीं होए ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त साहिब वापस जान लगे ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खलो गए कि एथों दी साहिब लंघन गए ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया खेतां दे रस्ते दी लंघ गए ता फिर कन्ना विच ए आवाज गूंजी ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने ता दर्शना दी होर लालसा वधी मन विराग विच आ गया ता अरदास कीती पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे एक पल जुगां दे समान बीत रहा है जो सहबी अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं।

अज मन विराग विच है। दोनों जने आनंदपुर साहब तुर पे के पहला साहबां दे दर ते चल के सेवा करिए, फिर साहबां दे दीदार करा। जितना चिर सेवा नहीं करांगे उतना चिर साहबां दे दीदार नहीं हो सकते। ता दोनों जने साहबां दे बाग विच आए ता केसरा सिंह माली नूं बेनती कीती कि कृपा करो सानूं इह सेवा दा मौका दिओ। केसरा सिंह ने गरीब जान के निमाणे जान के छोटे माली दे तौर ते रख लिया। दिन रात बूटियां दी सेवा करन लगे, श्रद्धा ते भावना नाल सेवा कर रहे हन। एक दिन साहिब कलगीधर पातशाह बाग विच आए ता एक फुल्लां दी क्यारी दे कोल खलोते बड़े खुश होए, बड़े प्रसन्न होए ते माली केसरा सिंह नूं शाबाश दित्ती। आखिया, तेरी सेवा ते असी बहुत प्रसन्न, तू बहुत सेवा करदा। ता केसरा सिंह ने बेनती कीती, पातशाह ए सेवा मेरी नहीं, ए सेवा छोटे माली दी है जो बहुत गरीब हन, आप दे चरणां नाल प्यार करदे हन पर बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल सेवा करदे हन, ए सेवा उहनां दी। ता साहिबां ने एकदम अखां बंद कर लईआं ते मुख विचों साहिबां दे ए आवाज निकली कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ए आके साहिब वापस चले गए। ता केसरा सिंह ने सोना ते मोहना नूं दसिया कि साहिबां ने ए वचन कीते हन कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ता दोनां दे नेत्रां विच जल वह तुरे। सावण भादो दी झड़ी लग गई ते आख्या, पातशाह सानू दीदार नहीं होणगे, अज मन वैराग विच आ। अच्छा पातशाह, आप दी रजा है जे दर्शन नहीं ता सेवा ही सही, आप दे दर ते सेवा करके दिन गुजार लवांगे। इन्हां दा नैन कटोरे भर गए, नैन तरसन लग गए, जो साहिब ही अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हन। नैन तरसन दर्श परसन।